यत् परीक्षा पत्राणां सूक्ष्म परीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुस्तरीय प्रश्नपत्र परीक्षण प्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्त मन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्त वर्षस्य ऋण प्रदान क्षेत्रे तीव्र वृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारते तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु, पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।

0: राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम से भारतीय खिलाड़ी के हर शॉट और प्रत्येक पॉइंट पर उठता ये शोर बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। ये जोश और जुनून 17 साल के लंबे अंतराल के बाद BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खुली आंखों से देखने का अवसर तो है, साथ ही उस बीते दौर से अब नए दौर के खिलाड़ियों और नई शैली के बैडमिंटन को निहारने का एक अवसर भी है। इन 17 सालों में भारतीय बैडमिंटन ने एक पीढ़ी को आगे बढ़ते, तिरंगे को थामते और देश का मान बढ़ाते हुए देखा है। वही पीढ़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मंच पर भारत के लिए कामयाबी की नई कहानी लिख रही है। पहले दिन की कामयाबी के सिलसिले को दूसरे दिन भी कुछ खिलाड़ियों ने ये शोर साफ तौर पर ये बता रहा है कि 14वीं सीट लक्ष्य सेन ने राउंड ऑफ 64 में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वेलेंटाइन फिलिमोन के खिलाफ पहला गेम 16-21 से गंवाने के बाद भारतीय खेल प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। एक आशंका मन लक्ष्य ने विरोधी को बस यही एक मौका दिया। दूसरे और तीसरे गेम में तो ऐसी रफ्तार पकड़ी कि फिलिमोन को पौं जमाने का मौका तक नहीं मिला। लक्ष्य 16-21, 21-8, 21-4 की इस जीत पर मुस्कुरा रहे थे तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। लक्ष्य ने अपनी इस जीत को खास बताया।
1: थोड़ा विंड था स्टेडियम में एंड फर्स्ट मैच था, जो मेरा टैक्टिक्स था वो थोड़ा चल नहीं रहा था एंड देन जो मेरे शॉट्स थे स्पेशली नेट से जो मैं खेल रहा था उसपे वो काफी शॉट जा रहे थे। आई वाज स्केर्ड कि वो बाहर चले जाएंगे तो आई थिंक दैट वाज नॉट वर्किंग एंड सेकंड सेट में आई ट्राइड टू ओपन अप द गेम उसको रैली अगेन। जब भी मैं ड्राइव खेल रहा था या फिर मैं शॉट उनको दे रहा था चांसेस एज ही स्टॉल एंड गॉट अ गुड रीच तो वो अटैक करके पॉइंट ले ले रहे थे, बट आई थिंक सेकंड सेट में मैंने वही चीज चेंज करी। आई ट्राइड टू गेट हिम इनटू रैलीज एंड इतने चांसेस उनको नहीं दिए अटैक करने के ड्राइव्स खेलने के। स्टार्टिंग से ही लैंग्वेज और जैसा मैं खेल रहा था आई थिंक दैट वाज आल्सो मच बेटर देन द फर्स्ट टू गेम।
0: महिला सिंगल्स में मात्र 18 साल की उन्नति हुड्डा ने म्यांमार की थेट हटर थुजार के खिलाफ राउंड ऑफ 64 के मैच में पूरी परिपक्वता का परिचय दिया। पहले गेम में उन्नति को मुश्किलें आ रही थी, उन्होंने माना कि शटल को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जल्दी ही तालमेल बिठाया और फिर गेम को बेहद नजदीकी मुकाबले में 22-20 से जीत लिया।
2: In the first set, I was just trying to understand the drift and everything, but she was also playing, she was very good and all. It was going neck to neck. I think in the last 5 points of the first game, I controlled and stayed patient and then she did some mistakes.
0: पहले गेम में उन्नति ने आसानी से अंक दिए थे, लेकिन दूसरे गेम में अपनी गलतियों को सुधार कर कोर्ट पर उतरी। उन्नति ने बताया कि उन्होंने नेट गेम और रणनीति को बदला और फिर दूसरा गेम 21-16 से जीतकर मैच जीतने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई।
2: And then the second game, I was able to know ki that end of the court, the attack is going faster, so I just played my game attacking and it helped me and stick to the plan. Her attack also was going really fast, so there was some difficulty for me also. In the first game, मैंने थोड़े नेट से फ्रंट कोर्ट से थोड़े एरर्स किए थे एंड देन आई वॉज रेडी इन द नेट फ्रंट कोर्ट। आई गेव सो मेनी पॉइंट्स फ्रॉम द फ्रंट कोर्ट सो देन आई बिकेम रेडी ऑन द फ्रंट कोर्ट एंड इट हेल्प मी।
0: हरियाणा के रोहतक की ये खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचने में अपने पिता के योगदान को बहुत बड़ा मानती हैं।
2: There is a massive contribution of my family and my dad. So I cannot say in words that how much he has contributed to me. But yeah, I am really thankful that I have a great family who supports me a lot.
0: Women's doubles में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला ने बड़ा उलटफेर कर दिया। Unseeded भारतीय जोड़ी ने 16वीं सीड अमेरिका की एलिसन कुन ली और लॉरेन लैम को दिन में ही तारे दिखा दिए। पहला गेम 21-15 से जीतने वाली गायत्री और त्रिशा ने दूसरे गेम को अपने लिए और भी आसान बना लिया। दूसरा गेम दोनों ने 21-12 से जीता और प्री क्वार्टर फाइनल में जोरदार दस्तक दी। इस जीत पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था और त्रिशा और गायत्री के चेहरे पर इसकी खुशी साफ दिख रही थी।
3: फील्स अमेजिंग, आई एम सुपर ग्रेटफुल, आई जस्ट फील वेरी प्राउड, बहुत खुश है। द कोर्ट्स वर लाइक वेरी मच लाइक यस्टरडे, अ बिट ट्रिकी, बट आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू अडैप्ट क्विकली एंड नॉट गेट टू फ्रस्ट्रेटेड, बट एज सून एज वी गॉट टू नो हाउ द शटल वाज मूविंग, आई थिंक वी कुड प्ले अ गेम बेटर एंड या आई थिंक वी वर प्रीटी एग्रेसिव टुडे व्हिच वर्कड इन आवर फेवर।
0: वीमेंस डबल्स में ही कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी को 9वीं सीड गैब्रिला स्टोवा और स्टेफानी स्टोवा ने आसानी से 7-21, 14-21 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने माना कि पहले गेम में हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई और लंबी रैली में विरोधी भारी पड़ी। दोनों ने ये भी माना कि फिटनेस पर काम करना होगा।
4: फर्स्ट गेम हम खेल रहे थे एंड रैलीज हो रही थी बहुत ज्यादा, बट हम पॉइंट नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे एंड हम लोग उनसे टफ फाइट भी दे रहे थे रैलीज में, बट वही हो रहा था कि एंड में पॉइंट उनको आ रहा था और फिर वो काफी लीड चली गई थी। हम लाइक इतना पेशेंट कॉन्फिडेंटली नहीं खेल रहे थे, हम थोड़ा हड़बड़ी कर रहे थे पॉइंट लेने में. वेरिएशंस करने चाहिए थे, लाइक वो हमसे थोड़े ओल्डर है, स्ट्रॉन्गर है, उनका स्मैश बहुत जोर से आ रहा था जितना हम कंपैरेटिवली मार रहे थे. वी आर गोइंग टू ट्रेन वेरी हार्ड, एकदम रिग्रेस ट्रेनिंग करना है, फिट होना है, कंसिस्टेंट होना है कि इतना तो रैलीज होगा, इतने स्ट्रांग रहेंगे कि इजी पॉइंट नहीं मिलने वाला है. तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अटैक और डिफेंस, दोनों में से एक चीज एकदम स्ट्रांग करना है.
0: उधर मिक्स डबल्स में अशित सूर्या और अमृता प्रमुथेश की जोड़ी ने तुर्की के इमरे सोनमेज और यासिमेन बेगताज के खिलाफ मैराथन मुकाबला किया, लेकिन तमाम जोर लगाने के बाद भी शिकस्त झेलनी पड़ी.
5: जस्ट फीलिंग सैड फॉर दैट, फॉर अस, फॉर द फैंस, फॉर द क्राउड, वी कुडंट कन्वर्ट द गेम, जस्ट फीलिंग बैड अबाउट इट.
0: 21-16 से जीता, लेकिन ये लय बरकरार नहीं रह सकी. दूसरे गेम में कांटे का मुकाबला हुआ, दोनों में से कोई भी जोड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी. एक एक अंक के लिए कांटे का संघर्ष दिखा. इस गेम के रोमांच का अंदाजा स्कोर से लगाया जा सकता है. इस मैराथन गेम को तुर्की की जोड़ी ने 30-29 के स्कोर पर जीता. मैच तीसरे गेम तक पहुंचा. इस गेम में शुरुआती बढ़त भारतीय जोड़ी ने बनाई, लेकिन एक बार फिर लय बिगड़ी और कड़े संघर्ष के बाद 24-22 से शिकस्त मिली. तीन गेम का ये मुकाबला रोमांच की हदों को पार कर गया. परिणाम को लेकर सूर्या और प्रमुथेश ने कहा,
5: पहला सेट में तो अच्छा खेल रहे थे, जीत भी गए पहला सेट. सेकंड सेट वही कॉन्फिडेंस में गए और मैच पॉइंट भी थे, थोड़ा प्रेशर हो गया, कन्वर्ट नहीं कर पाया. वी वर प्लानिंग फॉर ईच पॉइंट दैट व्हाटएवर वी प्लान देन गो आवर वे, सो वी एंडेड अप डूइंग लिटिल एरर्स.
2: आई मीन वी आर हैप्पी दैट वी हैव प्लेड दिस वेल, बट देयर आर सम टेक बैक्स वी विल फोकस ऑन, लाइक व्हेन वी हैव द मैच पॉइंट वी हैड टू प्ले सेफ, जस्ट इनसाइड, जस्ट फोकस ऑन फ्यू इजी पॉइंट्स, नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा और ट्राइंग टू टेक अ क्विक पॉइंट.
0: इससे पहले मिक्स डबल्स में ही रोहन कपूर और रितिका शिवानी गड्डे की जोड़ी भी कड़े संघर्ष के बाद कनाडा के जोनाथन बिंगसान लाई और क्रिस्टल लाई से 22-20, 19-21, 17-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इस हार की निराशा भारतीय जोड़ी की बातों से महसूस की जा सकती है.
5: फर्स्ट गेम ठीक था सर, कम्फर्टेबली जीत रहे थे. सेकंड गेम भी ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी इधर उधर मिस हो गया, एंड देन वी लॉस्ट अ बिट ऑफ टच, ट्राई टू प्ले अ लॉट ऑफ क्लोज पॉइंट्स एंड वहां पे वी स्लिप्ड आउट, एंड एज अ रिजल्ट we lost the second game, and then obviously home crowd hai, hamara stadium hai, hamara shehar hai, thoda pressure aa gaya starting mein dono ko, and then obviously didn't start well as a result.
0: ye to rahi bhartiya khiladiyon ki baat, lekin tournament mein dusre din bahut zyada ulatfer nahi hua. main singles mein duniya ki teesri ranking wale jonathan christie ne pehle daur mein germany ke matthias kiklitz ko 2 game mein aasani se shikast di. isi varg mein 13th seed singapore ke lohkin yev ne pehle round ka match canada ke brian young se aasani se jeeta. mahila singles mein 11th seed japan ki nozomi oku हारा को पहले दौर में ही कोर्ट पर खूब पसीना बहाना पड़ा. तुर्की की ओसगे बैराक ने उन्हें मैदान पर खूब भगाया. हालांकि ओकुहारा 3 गेम का ये मुकाबला जीतने में सफल रही. पसीना तो चौथी सीड चीन की चेन यू फेई को भी खूब बहाना पड़ा. जीत के लिए हांगकांग की लोसिनियान हैप्पी ने उन्हें 3 सेट तक इंतजार कराया. अब तीसरे दिन मेन सिंगल्स में पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 शी यू की को हराने वाले आयुष शेट्टी का सामना अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदी श्रीलंका के दुमिंदु अबे विक्रमा से होगा. लक्सेन राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के गैरेट टैन से भिड़ेंगे. वीमेन्स सिंगल्स में भारत के पदक की सबसे बड़ी उम्मीद और सीट पीवी सिंधु कनाडा की वेन यू झेंग से खेलेंगी. 49वीं सीट कैनेडियन खिलाड़ी वेन यू झेंग के खिलाफ सिंधु का पलड़ा काफी भारी माना जा रहा है. उन्नति हुडा के लिए कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिचेल ली के साथ मुकाबला कठिन हो सकता है, लेकिन उन्नति ने लय बरकरार रखी तो उलटफेर संभव है. मेंस डबल्स में 5वीं सीट सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भिड़ंत स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और एडम प्रिंगल से होगी. हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन का सामना 15वीं सीट कोरिया के कैंग मिन युक और की डांग जू से होगा. मिक्स डबल्स में 15वीं सीट ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मकाओ की जोड़ी लियांग लॉक चोंग और वेंग ची एनजी से खेलेंगे. उम्मीद है भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. प्रोड्यूसर शहनवाज खान और एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश.

0: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ವಾರ್ತೆಗಳು.
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता

0: के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जांच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
3: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और

0: जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केवंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अक्वापदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने ये घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2,000 से अधिक नौकरियां खतरे में। 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story.
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी

0: राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5,00,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत

0: भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्ण समिति

समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
2: जी,
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
3: आशा श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
2: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
3: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
2: जी,
3: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
2: जी,
3: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
2: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
3: श्रोताओं, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
2: जी,
3: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
2: जी,
3: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
2: जी,
3: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
2: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
3: श्रोताओं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और

0: आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
4: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
5: अच्छा,
2: वो सोच में पड़ गई।

0: फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
1: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
2: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
3: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
1: वो खुशी खुशी बहने लगी।
2: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
1: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
0: हाँ।
1: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
4: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
1: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी। उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
4: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
1: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
3: कूद जाओ ना।
4: कूद जाओ,
3: डरो मत।
4: हाँ,
3: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
4: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
1: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
0: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
1: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत

0: सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूं।
2: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
0: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: मां धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहां तक बहा कर ले आया।
0: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा,
0: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
2: चरैवेति, यही तो जीवन है।
3: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूं पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। हाँ, नी। हाँ, पा नी।
2: नी।
4: एक बार फिर कोशिश करो।
2: पा।
4: हाँ,
2: नी।
1: यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
4: मिसेस केलर
2: जी,
4: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಜಾಗೃತಿ ಶರ್ಮಾ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी. 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता. केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी. अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया. ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी. नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया. मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके. और अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी.
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं. और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन. और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन. इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी. श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है. श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है.
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है. ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है. 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है. एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो. कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है.
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही. उन्होंने कहा कि उनका

0: of that. तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशन ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए. अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा. बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंड स्लाइड, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है. उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही. राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है.
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा. उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया. झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है. एक रिपोर्ट.
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है. सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं. छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे. छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए. देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था. वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं. इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई. प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है. महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची.
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की. सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं. बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे. पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए. निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और

0: व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: ಕನಸತ್ತು.
1: The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए

0: on the Pande, and global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया. सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया. निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.5% नीचे आ गया. लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई. वहीं निफ्टी सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ. पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ. इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों मुख्य सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौथरपा बिकवाली देखी गई.
0: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the benchmark indices remained under pressure throughout the session, with broad-based selling observed across the markets.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई. सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो 1.3% और आईटीसी में 1.2% की सुस्ती आई. वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 1.7%, एटर्नल में 1.3% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.2% का उछाल देखा गया.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6%, and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3%, and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced and 231 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 पर बंद हुआ. उद्यन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई. वहीं निफ्टी भी कारोबारी सातवें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ. क्या कारण है जो मार्केट संभल नहीं पा रहा है और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
2: देखिए, जैसे कि कई महीनों से मार्केट का जो मूड है वो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है और उससे जो तेल की आपूर्ति के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो लग रहा है उसके उन कच्चे तेलों का जो दाम, उससे जो इंडिकेशन लिया जा रहा है, संकेत लिए जा रहे हैं, उससे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मार्केट मूवमेंट्स को. और अगर आप देखें पूरा साल जो है ना, अगर आप निफ्टी को 50 को देखें तो वो आपके ये तकरीबन 24,500 पॉइंट की रेंज में वो घूम रहा है. वो जब मूड अच्छा होता है, संघर्ष के बारे में

0: खबर तो रिलीफ मिली तो वो 500 के आसपास, 24,500 के पास। और जब ऐसी खबरें आती हैं जहां पे जैसे वो एमओयू हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो उसका उसकी मियाद पूरी हो गई, फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्लस वैश्विक बॉन्ड मार्केट्स में एक ये कहें कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स में जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका एक इफेक्ट वहां पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, ज़बरदस्त डाउन टर्न हुआ, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें कई बार रीइन्फोर्स कर जाती हैं और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। बाकी क्या कच्चे तेल के दामों से हमारे आर्थिक जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम ज़्यादातर ओवरवेलमिंग अमाउंट तो हम लोग आयात ही करते हैं, तो जब भी ऐसी खबर आएगी आप सबसे पहले आप देखेंगे करेंसी जो कि हमारा भारतीय रुपया है डॉलर के वनस्पत, उसके ऊपर दबाव पहले, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्विटी मार्केट्स, और फिर आप बाकी जो दूसरे मार्केट्स है उस पर आप देख सकते हैं या असर। तो ये एक मोटा मोटी चीज है, लार्जर जो फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं। क्या इंडिविजुअल कंपनीज के बैलेंस शीट्स और दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो रेजिलियंस श्योर कर रहे हैं, मतलब इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर एक जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए वो उनको उस हद तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपके कच्चे तेल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, वो इतना ऐसी एक मूलभूत चीज है, वहां पे आपने असर किया तो पूरे आपकी इकोनॉमी में, उसके बाद वो क्योंकि स्टॉक मार्केट को लीड इंडिकेटर बताया जाता है, वो आगे का एक इंडिकेशन देते हैं कि आगे चल के क्या होगा, तो वो चीज आप देख रहे हैं कि आगे चल के स्टॉक मार्केट्स को लगता है कि इम्पैक्ट होगा। कई बार एक्यूरेट नहीं होता, कई बार एक्यूरेट होता, कई बार सेंटिमेंट से इम्पैक्ट होता है, पर कई महीने हो गए हैं और आप इसमें आप मार्केट सेंटिमेंट को आप निगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना फंडामेंटल मूलभूत चीज है।
1: निफ्टी एट 24,000 उद्यन, इट्स बीन अ स्टिकी नोट काइंड ऑफ थिंग। इफ वी लुक बैक इवन 2 years बैक, इट वाज हॉवरिंग समवेयर अराउंड 24,000 इटसेल्फ। अगेन वी आर वेल इनटू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 26-27 fiscal now, and yet hovering around 24,000. Of course, we have the factors which is kind of driving it or not driving it. Having said that, Udin, we saw the first quarter results has been being quite promising. If we look at the results in face of the turmoil or the uncertainties we have witnessed over the past 6 months, especially with the Middle East crisis, as you say. Now, can we say that the Middle East crisis has kind of outweighed the good results or the more than satisfactory results we saw in the Q1 FY 26-27?
0: It's not bad at all. I mean, if you see the numbers. But, Nishit, the challenge is what the market is concerned about is how things are going to pan out in the future. So what typically if you're investing in something today, you're spending some money, let's use the word investing money in buying equities or directly stock, you're buying some stocks, or you're buying units of a mutual fund or whatever market linked product, you're buying some units, it could be anything. I mean, it could be buying units in an NPS, National Pension System. Now, what basically an investor, I mean, market sentiment is that if you are investing, do most of the people think, when do they think the investment will bear a return, and can they see that return happening? Now, if it's basically, if you look at it in a very simplified supply and demand, then when you think that you will, there are two fundamental things. One is, what is the risk of that value going down or staying where it is, whatever, that's one, which is happening to the principal, and will that money grow or not? These are just the two questions. So if I were to be addressing the listeners of this program, whenever we are analyzing all this, there's so many commentaries that happen, you just need to look at these two things. Now, if the markets are hovering at a particular place and they're not going up, then these two things are at work. So you'll be able to explain almost 70 to 80%

0: का मिलान किया जाता है। श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक CAS में सेबी को किसी भी तरह की हेराफेरी के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
1: देखिए, ये बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं, जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज है, उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं। तो कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है, जो वहां इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ, तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपके सिस्टम्स हारमोनियस होना पड़ता है। चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े हुए जो रेगुलेशन है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो अलाइन करें। और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरे जगह में होता है, दूसरे देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो हम वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें। ये उन लाइन में है, जो इसे टीदिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वो वाले टीदिंग प्रॉब्लम है। पार्टिसिपेशन का इशू है, जब जैसे पैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस पे नजर दौड़ाता है, वो यही कहेगा कि ये ज्यादा, हम चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा कि ज्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है, क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है, वनस्पति इसकी की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है, तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ETFs वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा, तो उससे आप जो आप और हम जैसे निवेशक है वो जिसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीजों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये FNO और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
0: उदयन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है, जिस तरह से RBI कर रहा है, खासतौर पर उस मामले में जहां पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
1: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फैटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है फैटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीज़ें हैं वो हम एक हर जगह में, हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें, ताकि एक पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका एक अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोनाइज करने की वाली बात है।
0: आगे बढ़ते हैं। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की ये योजना 1 सितंबर से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य देशभर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है। अभी देशभर में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए LPG सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है। और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया। जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे आ गया। उदयन, आज दक्षिण कोरिया के बाजार में काफी गिरावट देखी गई, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से काफ़ी हलचल मची हुई है। कुछ एक फंड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जैसे SK Hynix उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने फंड्स को, उस पर्टिकुलर फंड को, ETF को स्ट्रक्चर किया, तो वो वहाँ का उतार चढ़ाव के कारण भी कुछ और हैं और असर भी कुछ और हैं। और ये जब AI रिलेटेड बुलिशनेस चल रही थी तो तब वो इस तरह एक हाई टाइड की तरह वो उन सारे बोर्ड्स को ऊपर लेके जा रही थी। अब जब जैसे ही वहाँ पे पेसिमिज्म आ जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि कल आया, पिछले कुछ सत्रों से आ रहा है विश्व के मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, तो आप

0: आप पा रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी असर हो रहा है, वहां पे वायलेंटली इसलिए मूव कर रहे हैं और ज्यादा शेल्बी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके जो एआई रिलेटेड प्लेज हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहां पे असर ज्यादा देख रहे हैं.
1: राइट. And US President Donald Trump has delayed the planned 50% tariffs on Canadian imports worth $20 billion. The announcement came after the two countries reached a last-minute deal less than 2 hours before the sanctions were to go into effect. Canadian Prime Minister Mark Carney has said that the implementation of the tariffs has been postponed until the 21st of August. In a letter posted on social media post, Mr. Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global standards. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected two ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakay categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. And moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a three-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports last came in.
2: उद्यान हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है. ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कोई थाह नजर नहीं आ रही. आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियां हमारे सामने और आने वाली हैं?
0: देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का वो सप्लाई वहीं से निकलता है और हमारे देश के लिए अगर देखें वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं, तो उनको वहाँ से सप्लाई अगर आपूर्ति मिलती है वहाँ पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है. अब दिक्कत यह, अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीजों में असर पड़ जाता है. दूसरा है जो तेल वहां से आ रहा है उसमें का भी खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है. तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाता है. ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है और वो आप रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये जरूर चैलेंज बना रहेगा और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो जरूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में.
2: आगे बढ़ते हैं. सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यम जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
1: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. So benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, इसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मिंडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य 24 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा, इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
2: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore yesterday described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia Karen Brutyon and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia Edward Arsyan. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel retired Oli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament Jatiya Sangsad from 2 p.m. to 5 p.m. today, according to the Election Commission. The presidential election was necessitated after Muhammad Shahabuddin, a close aide of deposed Prime Minister Sheikh Hasina, resigned last month on health grounds before completing his 5-year tenure. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch rivals Pakistan in the final Pool D encounter of men's FIH World Cup at Amstelveen in the Netherlands yesterday to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign in the group stage. India registered a commanding 165 runs victory over host Sri Lanka in the first test in Galle yesterday to take a 1-0 lead in the 2-match series. Sri Lanka, chasing a target of 372 runs for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. And that is the end of this news bulletin.

समय हुआ है 12:11 और 6 सेकंड। ये समय है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा का निशिगंधा, और मैं हूं आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह लाई हूं बहुत ही खूबसूरत नगमे और खूबसूरत बातें, और उम्मीद करती हूं कि ये सफर हमारा बहुत ही खूबसूरत रहेगा। और शुरुआत इन अल्फाज के साथ, छोटी सी परिभाषा है जीवन साथी की, छोटी सी परिभाषा है जीवन साथी की, तुम शब्द मैं अर्थ और तुम बिन मैं व्यर्थ।

तेरा साथ हो तो ये पतझड़ भी मेरे लिए बाहर जैसा है। तेरा साथ हो तो ये पतझड़ भी मेरे लिए बाहर जैसा है, और तेरा संग मिलना यकीन मानो मेरे लिए उपहार जैसा है।

बंद करूं आंखें तो नजर आते हो तुम, बंद करूं आंखें तो नजर आते हो तुम, धड़कन बनकर दिल में समाते हो तुम। फासले भले ही हों जितने हमारे दरमियां, फासले जितने भी हों हमारे दरमियां, पर हर पल महसूस होता है कि यहीं कहीं आसपास हो तुम।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा।

आंखों में शिकायत और होठों पर खामोशी रखते हो। सच बताओ, यूं नाराज से क्यों लगते हो? हंस के बात कर लो कि दिल को सुकून आ जाए। तुम तो मेरी हर अधूरी दुआ की बंदगी लगते हो।

मेरी याद आने पर तेरा क्या हाल होता है बताओ ना मुझे, क्या मेरी तरह भी तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है? क्या तुम भी सब कुछ भूलकर मुस्कुरा देते हो या फिर मेरी कमी को तुम अपनी ही परछाई में ढूंढते हो?

छुपाए से भी नहीं छुपता तेरी इन आंखों का नूर, छुपाए से भी नहीं छुपता तेरी इन आंखों का नूर। ये जुल्फें तो बस एक बहाना है दीवाने को दीवाना करने के लिए।

हुस्न को जलमन की ओर से छिपाने वाले, जरा सुन मेरी इन आंखों की दीवानगी, तुझे इन पर्दों के पार भी कर देती।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, कहीं जाइएगा मत। समाचारों के उस पार मिलूंगी आपको कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4th लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4th लाइन, गुमीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितम्बर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से

29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हुआ है 1:11 और 11 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ गीत सुहाने। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ।

अधूरी है आसमां की चांदनी तुम्हारे बिना, और अधूरा है मेरा हर एक ख्वाब तुम्हारे बिना। जरा पास बैठो और निगाहें मिलाओ उस चांद से, कि उसे भी तो पता चले कौन है बेमिसाल तुम्हारे बिना।

जी चाहता है तुझे अपनी इन आंखों में छुपा लूं और पलकों को बंद करके इस जमाने से चुरा लूं, ना देख सके कोई तुझे मेरे सिवा, इस कदर तुझे मैं अपनी रूह में बसा लूं।

तेरी आंखों के रंग ने रोक लिया मुझे, वरना हम तो सफर में थे। तेरी आंखों के रंग ने रोक लिया मुझे, वरना हम तो सफर में थे। बहक गए कदम वहीं पर जहां हम तेरी नजर के असर में थे। जमाने की सारी राहें भूल गए हम पल भर में ही, जब सकैद हुए हैं तुम्हारे इन आंखों के शहर में।

कैसे भूलूं उस बूंदों भरी रात को जब तुम मेरे साथ थे, कैसे भूलूं उस बूंदों भरी रात को जब तुम मेरे साथ थे। हवाओं में घुली मोहब्बत थी और हाथों में हमारे हाथ थे। अब तो जब भी बरसती है ये बारिश की, अब तो जब भी बरसती है ये सावन की बूंदें, दिल तड़प उठता है याद करके कि कभी हम भी एक दूसरे के पास थे।

खुले आसमान में ये चांद भी खोया खोया सा है आज। इस खुले आसमान में ये चांद भी खोया खोया सा है आज। लगता है इसे भी हमारी तरह किसी की याद ने सताया है आज।

दिल की कहानी कहां से शुरू और कहां खत्म हुई पता ही नहीं चला, जब मेरी हर सांस तेरी दीवानी हुई। शुरुआत तो हुई थी महज एक अजनबी मुलाकात से, और अब ये हर धड़कन पुरानी कहानी हुई।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुरमई लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

0: कब प्यार हो जाए क्या पता, ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। अजनबी रास्ता पर चलते चलते ये किसी को भी अपना चुनता है। न पूछो इस दिल की मासूमियत का आलम तुम, ये बिना इजाजत ही किसी के हसीन ख्वाब बुनता है।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

क्या जीना तेरे बिना, जब मेरी हर सांस में तो समाया है। इस खाली दिल को सिर्फ तेरी ही चाहत ने तो महकाया है। लोग मांगते होंगे लंबी उम्र की दुआएं, मैंने तो हर दुआ में सिर्फ तेरा संग ही पाया है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है रात सुरमई और अंजू है आपके साथ। जानते हैं बहुत नाजुक होता है ये दिल, जरा सी बेरुखी से चटक जाता है और जमाना जिसे एक मामूली टुकड़ा समझकर पैरों से कुचल जाता है। तुम तो कह गए कि खुश रहना हमारे बिना भी, पर इस टूटे हुए दिल को कौन समझाए जो बस तुम पर ही ठहर जाता है।

हम बेजान से खड़े रहे और वो अपनी दुनिया बसाने चले गए। हम बेजान से खड़े रहे और वो अपनी दुनिया बसाने चले गए। हमारी आंखों के सामने हमारे ही ख्वाबों को जलाने चले गए। एक लफ्ज भी ना निकला हमारे कांपते होठों से उस वक्त जब वो मुस्कुराकर किसी और को अपना बनाने चले गए।

इत्तेफाक हूँ या खुदा की मर्जी, इत्तेफाक हूँ या खुदा की मर्जी, आज फिर से मिले हो इस मोड़ पर जहाँ कभी रास्ता खत्म हुआ था।

दिल की बस एक ही आरजू है इस ढलती हुई शाम में, दिल की बस एक ही आरजू है इस ढलती हुई शाम में, आज जी भर के चाहे और तुझे खो जाए तेरे नाम।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद रहेंगी आपके साथ भारती कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स में आम्सटलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet yesterday approved five projects worth over 13,000 crore rupees, including four railway and one highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared four multi-tracking projects of railway covering eight districts across four states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. Union Home Minister Amit Shah will chair the Southern Zonal Council SZC meeting today in Mahabalipuram, Tamil Nadu. The council comprises the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana and the union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The meeting will be attended by the Lieutenant Governors, Chief Ministers and Administrators of the member states and union territories of the southern region along with two senior ministers from each state. Union Minister Kiran Rijiju has termed the claim as false that China has entered 60 kilometers into Arunachal Pradesh. In a social media post, Mr. Rijiju said, photos and videos from Bangladesh were being used to falsely portray Chinese entry into Arunachal Pradesh. He said such claims could demoralize army personnel guarding the border and create unnecessary confusion. The minister said that the India-China border issue is a serious matter and appealed to people to not make any false or unverified claims on such a sensitive issue. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his two-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karen Rutyan, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Asaryan. The Defence Ministry said that the discussions cover the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation and defence research and development. Bangladesh will hold its presidential election today with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel retired Oli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch-rivals Pakistan in the final Pool D encounter of NENS FIH World Cup at Amstel Wien in Netherlands yesterday to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign into the group stage. India registered a commanding 165-run victory over hosts Sri Lanka in the first test in Goa

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराई का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबको। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की। रात की खामोशी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बिना आहट दिल तक पहुँच जाते हैं। मोहब्बत भी शायद ऐसी ही है, ना कोई दस्तक ना कोई शोर, बस धीरे से आती है और दिल में अपना घर बना लेती है।

कभी कभी दिल को किसी वजह की तलाश नहीं होती, बस किसी अपने की याद ही काफी होती है। मन भी कितना मासूम है, दूर बैठे किसी खास इंसान को याद करके भी उसके करीब होने का एहसास पा लेता है।

जब दिल में मोहब्बत हो तो वही दुनिया कुछ ज्यादा खूबसूरत लगती है। फूल वही होते हैं, चांद वही होता है, रात भी वही होती है, बस किसी अपने की मौजूदगी का एहसास हर चीज को खास बना देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। हर दिल में कोई ना कोई खूबसूरत सपना जरूर होता है, किसी के साथ हंसने का, किसी के साथ जिंदगी के छोटे छोटे पल बांटने का। कुछ सपने आंखें बंद करने पर नहीं बल्कि किसी खास इंसान को याद करने पर दिखाई देते हैं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM कूल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। रात की तन्हाई में जब दुनिया सो जाती है तब दिल की आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई देती है। कुछ चेहरे आंखों के सामने नहीं होते, फिर भी उनकी याद दिल के सबसे करीब होती है।

मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग शायद वही है जिसमें कोई दवा नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, बस एक सच्चा एहसास होता है। किसी की मुस्कान याद आ जाए और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाए, इससे खूबसूरत इश्क और क्या होगा।

जब शहर की रफ्तार थम सी गई है तब दिल की दुनिया जाग रही है, कोई याद बनकर, कोई ख्वाब बनकर और कोई मोहब्बत बनकर। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रहे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं ले रही हूँ अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षीय गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। उनसे पहले जस्टिस मार्ली बैकुंग इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली मिजो महिला थी। हेलियन डांगलियानी फिलहाल आइजोल जिला अदालत में जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड्स के आम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की गीत गंगा फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। संगीतकार स्वपन जगमोहन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म साजन बिना सुहागन से मोहम्मद रफी की आवाज में गीतकार इंदिवर, संगीतकार उषा खन्ना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कोहरा से हेमंत कुमार की आवाज में, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार हेमंत कुमार।

अभी आपने गीत सुना खट्टा मीठा से किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार गुलजार, संगीतकार राजेश रोशन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अजनबी से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शेषनाग से मोहम्मद अजीज की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म बेटा से अनुराधा पोडवाल की आवाज में, गीतकार समी, संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मैं 16 बरस की से उदित नारायण की आवाज में, गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल में 13,031 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो

0: हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमुंडी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर रेल मार्ग की वृद्धि होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब इस महीने की 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं को की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षा रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के इस फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और अब खेल खबरें। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। उधर श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कुछ हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore.

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भूर सुहानी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अनुराधा पोडवाल के इस भजन के साथ।

किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ी कोई सेवा नहीं। जैसे सूरज बिना भेदभाव सबको रोशनी देता है, वैसे ही हमारी छोटी सी खुशी और अपनापन किसी की पूरी सुबह को खूबसूरत बना देते हैं।

जीवन भी संगीत की तरह है, कभी सुर ऊंचे होते हैं कभी धीमे। जरूरी ये है कि हम हर सुर को स्वीकार करके अपनी जिंदगी की मधुर धुन बनाते रहें।